0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वरुणजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS Examines का एक खास अंश जिसमें हम समझेंगे कि डिजिटल मीडिया न्यूज और क्लिक बेट कॉन्टेंट का एंडलेस स्क्रोल कैसे हमारी सोच और कॉन्टेंट कंजम्पशन को बदल रहा है और एल्गोरिथम इसमें क्या रोल निभाते हैं. और अंत में SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का आज पांचवा और आखिरी एपिसोड होगा जो फोकस है ओवरसीज मनीज ट्रांसफर पर. अगर आपने कभी फैमिली को पैसे भेजे हैं या बाहर से कोई बड़ी रकम रिसीव की है तो ये एपिसोड आपके लिए खास तौर पर है. इसमें हम समझेंगे कि लिमिट क्या होती है, टैक्स के इम्प्लिकेशन क्या होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और ATO के कुछ बहुत ही जरूरी रूल्स जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते. तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी और आज के शो में हमारे पास आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी है, एक मूवी गिव अवे कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको इस न्यूज फ्लैश के बाद बताऊंगा. तो आप बने रहिए SBS हिंदी पर जिसपे हम प्ले करने वाले हैं न्यूज फ्लैश और फिर आपसे पूछेंगे कॉन्टेस्ट का सवाल. बुधवार 17 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2024 ऑस्ट्रेलिया में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों के लिहाज से अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा. इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ और ड्रग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पेनिंगटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेस से 2,596 लोगों की मौत हुई जो पिछले साल की तुलना में लगभग 11% अधिक है. इनमें से 2,000 से अधिक मौतें अनजाने में हुई. रिपोर्ट का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में अब ओवरडोज के कारण हर दिन औसतन लगभग 7 लोगों की मौत हो रही है. बिल क्रूज फाउंडेशन के रेवरेंड बिल क्रूज ने कहा कि ये आंकड़े एक चेतावनी की तरह हैं. उनका कहना है कि ड्रग डिपेंडेंस को आपराधिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा मानकर उसका इलाज किया जाना चाहिए. विक्टोरिया में एक नया कानून स्टेट पार्लियामेंट में पेश किया गया है जिसके तहत बच्चों को गंभीर अपराधों के लिए भर्ती करने वाले एडल्ट्स को लाइफ इन प्रिजन तक की सजा हो सकती है. प्रीमियर जेसिंटा एलन ने कहा है कि ये कानून ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े उन लोगों को निशाना बनाता है जो कमजोर और असुरक्षित युवाओं का शोषण करके उनसे हिंसक अपराध करवाते हैं. विक्टोरिया की अटर्नी जनरल सोनिया किलकेनी ने कहा है कि ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज में बढ़ते उस ट्रेंड के जवाब में है जिसमें क्रिमिनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बच्चों को अपराधों के लिए भर्ती कर रहे हैं और उनसे ऐसे अपराध करवा रहे हैं जिनसे समाज को बड़ा नुकसान होता है. सरकार का कहना है कि ये बदलाव उन लोगों को निशाना बनाने के लिए है जो इन अपराधों की योजना बनाते और उन्हें चलाते हैं, न कि उन बच्चों को जो इनका शिकार बनते हैं. ऑस्ट्रेलिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 15% वेतन वृद्धि लागू की जा रही है ताकि चाइल्ड केयर सेक्टर में वर्कर्स की कमी को दूर किया जा सके. ये वेतन वृद्धि दिसंबर 2024 से धीरे धीरे लागू की जा रही है. इसे परिवारों के लिए फीस में बढ़ोतरी की सीमा से जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य वर्कर्स को लंबे समय तक बनाए रखना यानी स्टाफ रिटेंशन है. शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि बेहतर वेतन से एजुकेटर्स को आकर्षित करने और उन्हें रिटेन करने में मदद मिल रही है. सरकार का कहना है कि जिन चाइल्ड केयर सेंटर्स ने ये वेतन वृद्धि अपनाई है वहां उन सेंटर्स की तुलना में फीस में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिन्होंने इसे लागू नहीं किया. नए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बाय नाउ पे लेटर सेवाओं पर सख्त नियमों से उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान पहले हो पा रही है जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं. क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इक्विफैक्स के डेटा के अनुसार एक साल में फाइनेंशियल हार्डशिप की औपचारिक रिपोर्ट करने वाले बोरोवर्स की संख्या बढ़ी है. ये संख्या 0.06% से बढ़कर 0.24% हो गई है जब इस सेक्टर को नेशनल क्रेडिट लॉस के तहत लाया गया. नए नियमों से वित्तीय तनाव यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा दिखाई दे रहा है और लोगों को समय पर सहायता लेने में मदद मिल रही है. साथ ही मिस्ड पेमेंट रेट्स में भी सुधार देखा गया है. डेटा के अनुसार बाय नाउ पे लेटर बोरोवर्स में फाइनेंशियल हार्डशिप की दर मॉर्गेज होल्डर्स की तुलना में कम है. ये दर बाय नाउ पे लेटर के लिए 0.24% और होम लोन्स के लिए

0: 0.5% दर्ज की गई है। इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत ने उन आरोपों से इनकार किया है जो ग्लोबल सुमट फ्लोटिला पर सवार ऑस्ट्रेलियंस ने लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। इस फ्लोटिला में शामिल 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गाजा के लिए सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान इसराइल ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में एक आधिकारिक सबमिशन में शामिल होकर यह आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उन्हें टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस और अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसडर डॉक्टर हिलेल न्यूमैन ने ABC को बताया कि ये दावे झूठे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलेटरल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। भारत को 52nd G7 समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी आपने सुना न्यूज फ्लैश और अब शो को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने न्यूज फ्लैश से पहले कहा था कि आज हमारे पास शो में एक मूवी का गिव अवे कॉन्टेस्ट सवाल भी है, तो वो पहले पूछ लेते हैं आपसे। निफा जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है 2026, उस फेस्टिवल में एक स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है बॉबी देओल की नई मूवी बंदर की, और ये जो कॉन्टेस्ट है खास तौर पे मेलबर्न के सुनने वालों के लिए है जो मेलबर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग होने वाली है संडे को। और आपको सिर्फ ये बताना है कि जो फिल्म बंदर आने वाली है बॉबी देओल की, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, और आपको उसमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। तो 0439-799-767 पर अपना जवाब भेज दीजिए। और यही कॉन्टेस्ट आज हमने दिन में शुरू किया था सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, और कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं। कुछ लोगों जिन्होंने अपना जवाब भेजा है उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जसलीन, सौरव, रिची, संजीव, पल्लव और सिल्विया, इनके जवाब हमें मिल चुके हैं और काफ़ी और एंट्रीज आ रही हैं। तो जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट नहीं देखी है, तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना जवाब भी भेजिए। 0439-799-767 कौन है बॉबी देओल की आने वाली मूवी बंदर के इस मूवी का डायरेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जब तक आपके जवाब आते हैं, और इसी फेस्टिवल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। निफा यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया भर के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा कर रही है और अलग अलग शहरों में इसके मूवी प्रीमियर्स हो रहे हैं। और न्यू साउथ वेल्स की जो राज्य सरकार है उसने 3 साल की फंडिंग भी अब इसे दी है। ऐसे में हमने चर्चा की है फेस्टिवल के समर्थक कुशाल व्यास के साथ और उनसे समझा है कि इस फंडिंग के क्या मायने हैं। आइए सुनते हैं वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
1: दोस्तों, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी NIFA जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था और अब सिडनी में फिर एक बार है, लेकिन इस बार इसके पास एक कुछ खास बात भी है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ एक 3 साल लंबा करार हुआ है NIFA का, जिसके अंतर्गत ये फिल्म प्रदर्शित करेगा हर साल। आज इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशाल व्यास, जो कि NIFA से जुड़े हुए हैं और हमसे चर्चा कर रहे हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा और कितना जरूरी है ये सफर। कुशाल, सबसे पहले तो SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते वैशाली।
1: कुशाल, क्या कर रहे हैं आप NIFA के साथ इस समय, और किस तरीके का अब तक का आपको लगता है कि NIFA का सफर रहा है?
2: वैशाली, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि मैं गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी सब हिंदी पिक्चरों से समझ सकता हूँ, इसलिए तो इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी में। तो वैशाली, my connection with NIFA is largely, so I was a former chief operating officer of the

0: the Australian New Film Council, and I'm involved in various different roles in the Australian Indian community and broader multicultural scene. So with NIFA, honestly, my biggest role really is just as a supporter, and I'll be emceeing. I emceed the Sydney launch, and I'll be hosting the Melbourne program that's coming up tomorrow as well. The connection here is largely that I see as a supporter is honestly something where, as a person of the Australian Indian diaspora, I get the opportunity to actually see and support what impact that film has. I know what impact film has had on me. Maine kaha tha ki mera Hindi is only like even possible samajh sakta hu kyunki bahut Hindi picture dekh liya. So film obviously has an impact, and we want to see that film impact across the board, not just people of Indian heritage, but across the board and into other audiences in Australia as well. And so far, it seems like it's been doing really well. You know, it's a national festival that's been hitting runs in metropolitan areas, but also hitting into the regions as well. So it's very cool to see that audience is expanding, and that engagement is becoming a lot more meaningful through both government but also on grassroots engagement as well.
1: इससे पहले SBS हिंदी के साथ हुई अपनी बातचीत में नीफा के संस्थापक अनुपम शर्मा ने ये हमको बताया था कि क्यों नीफा को यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को रीजनल्स में क्षेत्रीय इलाकों में ले जाना आवश्यक था.
2: हम ये भूल जाते हैं मेलबर्न सिडनी में कि दूर दराज के एरिया में इतने भारतीय समुदाय के लोग बहुतायत में हैं, ना सिर्फ फिल्में नहीं देख पाते बल्कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने सिनेमा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को अपने ऑस्ट्रेलियन पड़ोसी से शेयर करें. हम आप भारतीय समुदाय के लोग तो घर आती हैं, हमें बरातियों को बुला, जो गैर भारतीय समुदाय के लोग हैं हमें उनको बुलाकर अपनी फिल्में दिखानी है. तो आप और हम तो हिंदी फिल्मों की चर्चा कर ही सकते हैं, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए कि निजी तौर पे, व्यावसायिक तौर पे, कि जो भारतीय नहीं है उनको मैं अपनी संस्कृति, अपनी फिल्में, अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं. उसी से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं.
1: इसी चर्चा को जब हमने खुशहाल के साथ आगे बढ़ाया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा.
3: आप जब अपनी जेनरेशन को देखते हैं और अब जिस तरीके का इंडिया एक्सपोजर है, दोनों ही सिचुएशंस में फिल्म्स को कितना इम्पोर्टेंट पाते हैं?
0: मुझे लगता है कि फिल्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है. इन द सेंस के आई एम नॉट वन दैट इज यू नो सुपर स्टार स्ट्रक इन दैट सेंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ शाहरुख खान. इफ आई सॉ हिम आई'd बी वेरी वेरी स्टार स्ट्रक. बट फिल्म इज मच मोर डीप देन जस्ट इट्स इम्पैक्ट इन जनरल पॉप कल्चर. एंड यू नो इन माई जनरेशन, इन ओल्डर जनरेशन, इन यंगर जनरेशन, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ पीपल गोइंग आउट सीइंग वॉचिंग स्टोरीज. I think the impact, though, is for people of Indian heritage, it is a connection with culture, because Indian film has become so much more mainstream in many ways, or going in that direction. That connection with culture is becoming more significant, more accepted. They can feel more comfortable in who they are and celebrate a big part of that cross-cultural heritage in many ways. But I think the broader picture, both to Indians and non-Indians alike, is that film is about storytelling. It's about shared connection. And so you don't need to be Indian to watch an Indian film in the same way that you don't need to be German to watch a German film, and so on and so forth. Humans connect with stories. And at a time where the world seems increasingly divided, film is that sort of connecting the conduit between different communities, understanding themselves better through storytelling. So I feel there's a much sort of softer power in film that gets talked about less, but is probably the most significant part of this entire thing.
3: Let's talk a little about New South Wales government supporting NIFA. So, New South Wales government ka bilkul abhi announcement aaya hai NIFA ko support karne ke liye. Kitna zaruri hai state governments ka ya regional powers ka, regional governments ka, local councils ka is tarike ke festivals ko support karna, aur aapki opinion mein NIFA baki ke film festivals se kis tarike se alag raha hai?
0: बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई डिवाइड दैट इन टू. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत इसेंशियल है. तो वो सब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और सब फेस्टिवल्स, तो दे वुड से दैट, बट इट इज वेरी वेरी ट्रू. रीजन बीइंग के देयर इज ओनली सो मच वन कैन डू इन ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम द आउटसेट. एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू नो अनुपम शर्मा इन द वर्क दैट इज डन टू ब्रिंग NIFA टू वेयर इट इज इन सच अ शॉर्ट टाइम दैट इट्स गॉन ट्रूली नेशनल. बट आई थिंक दैट विद गवर्नमेंट सपोर्ट इट इज एक्चुअली फाइनली शोइंग दैट गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स money where its mouth is. That you know hum sab suna hai ki Australia India ka connection bahut important hai, or you know those sorts of speeches we hear very often, but it is very significant that the investment, the sort of support that could actually

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: आउटरीच सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संबोधित किया। समुद्री व्यापार मार्गों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में की। हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वैश्विक सहयोग में समान

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankEye for details. Capital One and a member FDIC.
4: को लेकर ज्यादातर तकनीकी काम पर पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। इस बैठक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की संभावना है। और अब चर्चा नीट परीक्षा की, जिसको लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, जो मेडिकल छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, इसमें गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है। पिछली बार पेपर लीक के कारण 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बार कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार सजग है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छात्रों की गूंज नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के लिए आज राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं। यहां वे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। छात्र और उनसे जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार पर कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कोचिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले कोटा शहर में हजारों छात्र रहते हैं। कार्यक्रम में छात्रों को आने से रोकने के लिए प्रशासन दबाव डाल रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस बारे में कहते हैं,
5: जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी।
4: वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहते हैं,
6: पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जहां तक ये नीट की बात करते हैं, तो ये आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू हुआ, केरल से। केरल में हमारा शासन नहीं था, वहां से शुरू हुआ। फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष।
4: छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी देश भर के शहरों में प्रदर्शन कर रही है। नीट और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मंगलवार को नागपुर में प्रदर्शन किया गया। इसके पहले जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अभिजीत ने इसके पीछे RSS का हाथ होने का आरोप लगाया है। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास को लेकर अभिजीत कहते हैं,
7: आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
4: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी का मुद्दा बड़ा और राजनीतिक बनता जा रहा है। अब इसकी जांच SIT के हवाले है। संदिग्धों के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और पुजारियों से भी जानकारी ली जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
8: जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए IIT बनना था, वहाँ SIT बन रही है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं, और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ।

0: अधिकारी जांच करेंगे, इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं,
2: भाई अगर संत हो सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गेरुआ बने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। जो चढ़ावा जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो भारतीय एंट्री हो जाती है ईडी की।
1: भाजपा ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की भाजपा सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आई है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहचान में सकारात्मक बदलाव आने का दावा किया।
3: अब यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन से है।
1: उत्तर प्रदेश के बाद चर्चा महाराष्ट्र की, जहां राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुए टूट के बाद अब बारी शिवसेना उद्धव गुट की है। इसके 9 में से 6 लोकसभा सांसद बगावत कर सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए बड़ी धनराशि ऑफर की जा रही है। इन सांसदों को पाला बदलने से रोकने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद सक्रिय हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इंडिया रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो गया एक एड ब्रेक का, लेकिन एड ब्रेक से पहले आज का जो कॉन्टेस्ट सवाल है वो एक बार आपसे फिर से पूछ लेते हैं। काफ़ी एंट्रीज आ रही हैं और अगर आपने अपना जवाब अभी तक नहीं भेजा तो आप ही भेज दीजिए। ये कॉन्टेस्ट है निफा से जुड़ा हुआ, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। खास तौर पर ये जो मूवी टिकट्स हैं ये मेलबर्न के लिए हैं, तो अगर आप मेलबर्न से हैं तो ज़रूर अगर आप मैसेज में लिख देंगे कि आप मेलबर्न से हैं तो और अच्छा होगा। सवाल यह है कि बॉबी देओल की जो मूवी आने वाली है बंदर, उसकी उस मूवी के डायरेक्टर कौन है? आप अपना जवाब अपने नाम और ईमेल एड्रेस के साथ 04397997667 पर भेज सकते हैं। ये इस मूवी का प्रीमियर होने वाला है इस फिल्म फेस्टिवल में इस 21 जून यानी संडे को, और ये मेलबर्न में होने वाला है और 6 बजे शाम में इसका प्रीमियर होगा। तो अगर आप भी इसमें आना चाहते हैं तो डबल मूवी पास जीतने का मौका है। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि बंदर मूवी जो नई मूवी है बॉबी देओल की, उसके फिल्म डायरेक्टर कौन है? 04397997667 हमारा नंबर है। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अगर आप मेलबर्न रहे हैं तो जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये खास तौर पे मेलबर्न के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैट ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर कुछ गानों का समय हो गया है और कुछ आखिरी रिपोर्ट्स। बने रहिए SBS हिंदी पर।
5: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos tus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
10: Mom, please.
9: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
10: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
9: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
10: Wow, you weren't kidding, Mom.
9: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
9: No, the other one.
10: What's in your wallet?
9: Oh, that's my boy.
11: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
12: Yeah. SBS.com.au/Hindi को अपना

0: ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए, sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब समय हो गया है एक गाने का। गाना सुनेंगे और बहुत ही आइकॉनिक गाना है और शाहरुख खान की मूवी का गाना है, वो हम सुनेंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि इस गाने के बाद हम वापस आएंगे और आपको लेके चलेंगे एक खास रिपोर्ट में SBS एग्जामिन्स में, जिसमें आज बात होगी सोशल मीडिया स्क्रोलिंग की। तो उस रिपोर्ट का भी आप इंतजार करिएगा और जरूर सुनिएगा। मैं आपको मिलता हूं इस गाने के बाद।

आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इस वक्त अब हम बढ़ते हैं आगे एक रिपोर्ट की तरफ। डिजिटल मीडिया, न्यूज़ और क्लिकबेट कंटेंट का कभी ना ख़त्म होने वाला स्क्रॉल, चाहे वो

0: हेडलाइन हो या फोटो और वीडियो, ये एक समाज के तौर पर हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। एल्गोरिथम किस तरह काम करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में, और ये है SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश, और इसे प्रस्तुत करेंगे आपके लिए अनीता ब्रार।
1: ऑस्ट्रेलिया में मीडिया ओनरशिप का जमाव या केंद्रीयकरण दुनिया में सबसे खराब में से एक कहा गया है, और जिस तरह की खबरें हम देखते हैं उस पर मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपना असर डाल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक समाज के तौर पर हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये एक जटिल जाल और वर्गीकरण है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ही बड़े प्लेयर्स हैं। 9 एंटरटेनमेंट कंपनी, सदर्न क्रॉस ऑस्ट्रेलियो, 7 वेस्ट मीडिया और न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मीडिया संगठनों के पास द ऑस्ट्रेलियन, द फाइनेंशियल रिव्यू, स्काई न्यूज, 9 न्यूज, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, द एज जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं। लिस्ट लंबी है, और पिछले लगभग 10 सालों में मेटा, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी न्यूज का मुख्य सोर्स बन गई हैं। ये बड़ी कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अपनी डिजिटल बिचौलिया चलाती हैं जो हमारे और मीडिया कंपनियों के बीच बैठती है, और असल में हमें मिलने वाली जानकारी के चौकीदार यानी गेटकीपर बन जाते हैं। SBS एग्जामिन्स के इस एपिसोड में हम जान रहे हैं कि बड़े मीडिया और बड़ी टेक कंपनियां कुछ आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मिलने वाले न्यूज पर कैसे असर डाल रही हैं, और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर कैसे असर पड़ रहा है। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। कैमरन मैकडोनल्ड कहते हैं कि जब मीडिया ओनरशिप एक जगह जमा हो जाती है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है, तब ये कुछ खास लोगों को गलत तरीके से अधिक शक्ति दे देती है, जो हमारी राजनीति और पब्लिक डिबेट को आकार देने में काबिल हो जाते हैं।
2: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well.
1: McDonald, Adelaide University में मीडिया और कम्युनिकेशन लेक्चरर हैं, और 2024 में ग्लोबल मीडिया और इंटरनेट कंसंट्रेशन पर नजर डालने वाली टीम का हिस्सा थे। रिपोर्ट में पाया गया कि मीडिया सघनता यानी कंसंट्रेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे खराब स्थान पर है।
2: If this was any other sector, if we were talking about I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated. For the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
1: Headline or news hook, हमेशा किसी कहानी को जितना हो सके उतना दिलचस्प या रोमांचक बनाने के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी डिजिटल मीडिया कंपनियों ने क्लिक और एंगेजमेंट के लिए हेडलाइन और कहानियों को सनसनीखेज बनाने का बढ़ावा दिया है।
2: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but is just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
3: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
1: Dr. Michael Neutel, Queensland University के School of Psychology में associate professor हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय हम जो देख रहे हैं, खासकर जिसे न्यूज माना जाता है, वो एक प्राथमिक इच्छा को जगा रहा है जो हमारे पुराने पूर्वजों तक जाती है।
3: You know, our brains are designed to find threats in the environment, and we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying

0: date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
1: Unka kehna hai ki news aur clickbait content ka kabhi na khatm hone wala scroll, chahe wo headline ho ya photo ya video, असल में हम में से बहुत से लोगों को एक सीखी हुई लाचारी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस का अनुभव करा रही है, जो आखिरकार इस बात पर असर डाल रहा है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे काम करते हैं.
0: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
1: तो जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया से न्यूज ले रहे होते हैं, तो हम उन वजहों के बारे में ज्यादा ध्यान कैसे रख सकते हैं कि हमें ऑनलाइन कुछ चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं?
0: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often like, you know, right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing. And then, you know, for example, there are times when I have, you know, sent a letter to my local politician saying, like, what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself is, this time spent on this social media app actually serving me? Like, do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time, the answer was no.
1: Algorithm or social media ko experience karne ke tarike lagatar badal rahe hain. वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर तानिया नॉटली का कहना है कि मीडिया लिटरेसी अब कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, ये आवश्यक है.
2: सो मीडिया लिटरेसी इज अबाउट योर एबिलिटी टू यूज, एनालाइज, क्रिएट एंड शेयर मीडिया एंड डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजीज.
1: इसमें ये भी शामिल है कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करते हैं और हमें वो जानकारी दिखाते हैं जिससे हम जुड़ने की संभावना रखते हैं.
2: The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve this, they'll profile us, they'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer.
1: वो कहती है कि जब लोगों को ये बताया जाता है कि उनके ऑनलाइन इंटरेक्शन से पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, तो वो इस बारे में बेहतर तरीके से फैसले ले पाते हैं कि किस पर भरोसा करना है.
2: Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I saying this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for, to take back some control over your experience.
1: SBS Examines के लिए Olivia Diorio और SBS हिंदी के लिए इस एपिसोड को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने. अधिक जानकारी के लिए sbs.com.au/sbsexamines पर जाएं.
3: एक डॉक्टर होने के नाते मैं सारा दिन अलार्म सुनती हूँ, मॉनिटर के, कॉल के बटनों के, पर एक अलार्म है जो केवल आप सुन सकते हैं, आपके भीतर का. मरीज और उनके प्रियजन उन पहले लोगों में हो सकते हैं जिनकी नजर में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है. इसलिए यदि आप अस्पताल में हैं और महसूस करते हैं कि आप या आपके किसी प्रियजन की हालत बिगड़ रही है, तो याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है. न्यू साउथ वेल्स के किसी भी पब्लिक अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में आपकी चिंताएं व्यक्त करने के लिए रेज इट प्रक्रिया का उपयोग करें. इस प्रक्रिया को समझने के लिए health.nsw.gov.au/raiseit पर जाएं. हम हैं यहाँ आपके लिए.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying

0: The peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
1: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और एक और गाने का वक्त हो गया है. और उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कोई भी पॉडकास्ट पसंद आया है, कोई भी ऑडियो कार्यक्रम, और आप उसे एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है sbs.com.au/hindi. और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर लाइक करिएगा, जहां हम आपके लिए कम्युनिटी स्टोरीज लेके आते हैं और बहुत सारे मजेदार कॉन्टेंट और. चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद.

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे शो के आखिरी रिपोर्ट का। आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं हमारी जो फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड। अगर आपने कभी भारत या विदेश में परिवार को पैसे भेजे हैं या विदेश से कोई बड़ी रकम प्राप्त की है या करने वाले हैं तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड आपके लिए जरूर है। इसमें हम समझेंगे कि विदेश में मनी ट्रांसफर की क्या सीमाएं होती हैं, क्या उन पर टैक्स लगता है, कौन से रिकॉर्ड रखना जरूरी है और ATO तथा ऑस्ट्रैक के वो अहम नियम क्या हैं जो कई लोगों पर लागू होते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पता नहीं होते। आइए सुनते हैं स्वाति शर्मा की तरफ से ये जो खास सीरीज है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि टैक्स सीजन से पहले हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का विषय है विदेश पैसे भेजना और रिसीव करना और उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हमारे समुदाय में ये बात बहुत कॉमन है, जहां परिवार में अपने माता पिता को महीने महीने पैसे भेजे जाते हैं या फिर किसी भाई बहन की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसे भेजे जाते हैं, या कभी कभी इंडिया से पैसे मंगवाए भी जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर कोई विरासत में कोई गिफ्ट मिला। एक बेसिक सा रूल है जिसे जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज पैसे भेजने पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से कितने भी पैसे भेज सकते हैं, पर तीन चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। एक, अगर एक ट्रांसफर $10,000 से ज्यादा का है तो बैंक या रेमिटेंस सर्विसेज ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट ऑस्ट्रैक को करती हैं। ऑस्ट्रैक ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर यह सिर्फ मॉनिटरिंग का एक तरीका है। और दूसरा, अगर वो पैसा आपकी इनकम था या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था तो उसे टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना जरूरी है। और तीसरा, अगर वो पैसा पहले से टैक्स पेड इनकम से आया है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, पर रिकॉर्ड रखना फिर भी जरूरी है। इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे आज पुनीत सिंह के साथ, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। तो पेरेंट्स या भाई बहन को इंडिया पैसे भेजना या फिर गिफ्ट भेजना, ये अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, तो बताइए कि गिफ्ट और इनकम में क्या फर्क है और क्या ये फर्क टैक्स के हिसाब से मैटर करता है और क्यों?
2: थैंक यू स्वाति जी। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाति जी। हमें अक्सर आए दिन लोग फोन करते हैं, पूछते हैं मुझे पैसे सेंड करने हैं, मुझे पैसे मंगवाने हैं। सो दिस टॉपिक इज क्वाइट रेलेवेंट फॉर अस। जब आप पैसे यहाँ से सेंड करते हो, अगर तो वो आफ्टर टैक्स मनी है, फॉर एग्जांपल आप अपना टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास सेविंग है उससे पैसा भेज रहे हो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप, लेट्स से आपकी 70,000 की इनकम है और नियरली आपने 1,10,000 ऑलरेडी भेज दिया हुआ है इंडिया में, तो देन समथिंग इज देयर। सो रेड फ्लैग वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपकी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन, चाहे रेमिटली, एनी प्लेटफॉर्म, दे शेयर डेटा विद ATO विद ऑस्ट्रैक। सो वहीं से ये सारी जानकारी कलेक्ट हो जाएगी कि आपकी इनकम इतनी है जो आपने डिक्लेयर की है, थ्रू आउट द ईयर आपने इतना भेजा है, सो दैट विल नॉट गोना मैच। सो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप आफ्टर टैक्स चीजें भेज रहे हो, आफ्टर टैक्स जो आपकी सेविंग है, शुडन्ट बी एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, देन यू आर डेफिनेटली इन हॉट वाटर।
1: तो अगर इंडिया से कोई बड़ी रकम रिसीव होती है, जैसे कि कोई इनहेरिटेंस है या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी की बिक्री होती है, या कभी कभी पेरेंट्स भी गिफ्ट भेजते हैं, तो क्या उसे यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है और क्या उस पर टैक्स लगता है?
2: आपको डिक्लेयर नहीं करना स्वाति जी यहाँ पर, बट ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो उस इनकम के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो थ्रू आउट द ईयर, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और वो जो आपका बैंक होता है वो ATO को रिपोर्ट करता है कि थ्रू आउट द ईयर इतना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, एंड इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपके फैमिलीज इंडिया से पैसा भेज रहे हैं फॉर सम रीजन कि उनको इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करना है बच्चे को या बेटी को या बेटे को, तो उस पर टैक्स नहीं है। बट यस, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको कि यस ये पैसा इंडिया से आया है, किस पर्पस के लिए आया, एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
1: तो जो लोग रेगुलरली पैसे भेजते हैं, कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें रखने चाहिए, जो एटीओ उनसे मांग सकता है?
2: सी, जब इंडिया से आप पैसे यहाँ पर मंगवाते हो, ठीक है, पहले तो ये चीज देखनी कि पैसे भेज कौन रहा है। अगर तो आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ओके, एंड मेक श्योर आप उनसे गिफ्ट लेटर लिखवा लीजिए कि दैट दिस इज द गिफ्ट एंड दे आर नॉट टेकिंग दिस बैक, राइट। सेकेंडली, कई लोग अपना अकाउंट इंडिया में भी होता है, वो वहां से पैसा मंगवाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मेक श्योर कि वो जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा या आया, उनके पास एक वैलिड रीजन हो कि वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। क्योंकि अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेट से आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सेल की है एंड वो आपने वहां पर पैसा इकट्ठा किया हुआ बट यहां पर रिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपको वो रिपोर्ट करना होगा बिकॉज यू आर अ टैक्स रेजिडेंट। चाहे आपने ओवरसीज प्रॉपर्टी सेल की है, आपको यहां पर रिपोर्ट करनी होगी। सो मेक श्योर वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। एटीओ 4 साल 5 साल पीछे भी जा सकता है अगर दे फाउंड आउट कि भाई आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ।
1: पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स में अब तक हमने बात की टैक्स सिस्टम के बेसिक से लेकर डिडक्शंस, साइड हसल्स, स्कैम्स और विदेश पैसे भेजने की। उम्मीद है इस सीरीज ने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे और टैक्स सीजन को थोड़ा आसान बनाया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इस श्रृंखला के अब तक के सभी भाग आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS हिंदी पर इस श्रृंखला को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
0: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
0: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है। SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
3: SBS हिंदी पर आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे एंट्रीज भेजी हैं जो हमारा आज का मूवी कॉन्टेस्ट था और इसके विजेता अनाउंस होंगे कल के शो में, तो नज़र ज़रूर रखिएगा हमारे सोशल मीडिया पर भी और रेडियो शो को भी ज़रूर सुनिएगा। और ये मूवी प्रीमियर होने वाली है बॉबी देओल की निफा फेस्टिवल में इसी संडे 21 जून को, ख़ासतौर पर मेलबर्न में। तो विजेताओं के इनाम कल घोषित रहे होंगे और फिलहाल मैं आपसे लूंगा अलविदा एक आखिरी गाने के साथ, स्वादी के साथ, कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।

ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूम के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और मुझे यकीन है कि आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर रेडियो पर बराह रास्त नहीं भी सुन पा रहे हो तो आप हमें हमारे वेब पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हम फेसबुक पर भी रोज़ाना पोस्टिंग करते हैं, और वीडियो पर भी हम वीडियोस भी छोटी छोटी रील्स आपके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। आज आपके प्रोग्राम के लिए हमने जो कुछ इंतखाब किया है उसमें गीत नगमे और गज़लें तो शामिल ही हैं, मगर आज आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चैरिटी की फंडिंग या चंदा देने या जमा करने या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग किस तरह की जाती है, इसके क्या कानूनी तरीक़ेकार है। इस सिलसिले में आप एक मालूमाती पॉडकास्ट आगे चलकर सुनेंगे, और इसके अलावा आपको हम सुनवाएं चकवाल की कहानी। जी हाँ, आपने खबरों में ये अफसोसनाक खबर पहले भी शायद सुनी हो कि पाकिस्तानी नजाद एक 9 साल बच्ची जो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी पंजाब चकवाल में मौजूद थी, वहाँ चोरों की फायरिंग के क्रॉस पुलिस की फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर जाँ बहक हो गई है। इसकी बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, तो आप इस सिलसिले में हमने बच्ची के वालिद जो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं और अस्पताल में है, उनसे बातचीत की है, और सही सूरत हाल जानने के लिए उनसे बातचीत आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा आपको पाकिस्तान भी लिए चलेंगे, जहां पाकिस्तान की सालिसी से अमेरिका ईरान अमन माहिदा मुतवक्के है, और बजट पर पीपल पार्टी के तहफ़ुज़ात हैं, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं, और इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली, ये सब मौजूआत का अहाता करेंगे पाकिस्तान रिपोर्ट में। और इसके अलावा भी बहुत से ऐलानात और अहम खबरें प्रोग्राम के हिस्सा रहेंगी। और वर्ल्ड कप का एक अहम मैच उर्दन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त जारी है, अगर उस वक्त तक कोई नतीजा आ गया जब तक हम ये प्रोग्राम आपसे ख़त्म कर रहे होंगे तो उसका जिक्र भी करेंगे। इसके अलावा भी फीफा वर्ल्ड कप की बहुत सी कहानियां हमारे वेब पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। लियारी की एक वीडियो स्टोरी भी बहुत ट्रेंड कर रही है, जो आप देख सकते हैं SBS उर्दू के इंस्टाग्राम पेजेस पर। मगर आइए पहले चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबरों का मुख्तसर बुलेटिन आपको सुनवाते हैं। June 17 बरोज बुध की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका स्विस रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में बाजाब्ता तौर पर मुहिदे पर दस्तखत करेंगे। स्विस मीडिया के मुताबिक मुजाकराती सालिस पाकिस्तान और कतर ने इस नए मुकाम की तजवीज दी थी। अन मुहिदे की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में होगी, और तकरीब के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और वफाकी वजरा के हमरा जेनेवा रवाना हो रहे हैं। इम्कान है कि ईरान और अमेरिका के वफूद जुमे के रोज बाकायदा मुलाकात करेंगे। खातमुल अंबिया ने एक बयान में खबरदार किया है कि अगर इसराइल जनूबी लिबनान पर अपने हमले बंद नहीं करता तो इसे ईरानी मुसल्ला फौज की जानिब से सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर की जानिब से जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइल ने जनूबी लिबनान में 84 मरतबा जंगबर्दी की खिलाफ वर्जी की है। ऑस्ट्रेलिया में 2024 के दौरान मनुष्यात की ज्यादा मकदार के इस्तेमाल से होने वाली अमवात की तादाद मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। आजाद इदारे पैंटागन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्यात के 22,596 अफराद हलाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 11% ज्यादा है। विक्टोरिया में ऐसे बालिग अफराद को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को संगीन जरायम के इर्तिकाब के लिए भर्ती करते हैं। इस हवाले से नए कवानीन रियासती पार्लियामान में पेश कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुहिदे के बाद मशरक वस्ता के बाद हिस्सों के लिए सफरी इंतबाह में नरमी कर दी है। महकमे खारजा ने बहरीन, इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए सफर न करने की हिदायत को सफर की जरूरत पर दोबारा गौर करने की सतह पर मुंतकिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इसराइल के सफीर ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोफ्लोटेला में सवार ऑस्ट्रेलियन शहरियों की जानिब से लगाए गए बदसलूकी के इल्जाम को मुस्तरद किया है और उन्हें मुतजाद करार दिया है। इसराइल ने फ्लोटेला पर सवार 11 ऑस्ट्रेलियन शहरियों को हिरासत में लिया था, जो गजा तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन अफराद ने आलमी फौजदारी अदालत में जमाई
जमा कराई गई सरकारी दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया है कि दौरान हिरासत उन्हें तशद्दुद और जंसी तशद्दुद और दीगर नारवा सलूक का निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्होंने सदर ट्रंप की सालगिरह की तकरीबात के दौरान व्हाइट हाउस में मुनक्किद होने वाले UFC इवेंट पर हमले की एक मुबैना साजिश को नाकाम बना दिया है। FBI के डायरेक्टर के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि हुकाम इस मंसूबे को एक मरबूत दहशतगर्दाना साजिश करार दे रहे हैं। ताहम मुबैना मंसूबे की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। वन नेशन की सरबराह पॉलिन हैंथन आज पहली बार पार्टी रहनुमा के तौर पर कैनबरा के प्रेस क्लब में सहाफियों का सामना कर रही हैं। वन नेशन की हालिया मकबूलियत के बाद उन पर एक संजीदा सियासी पार्टी के लीडर के तौर पर पॉलिसी बयान देने पर दबाव बढ़ता रहा है। प्रेस क्लब में पॉलिन हैंथन के प्रेस क्लब में खिताब के दौरान मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी की और उनके खिताब के दौरान रखना डालने की कोशिश की। और अब फुटबॉल के वर्ल्ड कप की खबरें। फुटबॉल में इराक के कोच ग्राहम अर्लैंड ने कहा है कि अपनी टीम की वर्ल्ड कप मुहिम के इफ्तिताही मैच में नार्वे के हाथों 4-0 से भारी शिकस्त के बावजूद उनकी तमाम उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। याद रहे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी के साबिक फुटबॉलर जैदान इकबाल पहले पाकिस्तानी नजात फुटबॉलर बन गए हैं जो वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में इराक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैदान इकबाल मैनचेस्टर में पैदा हुए और वहीं पले बड़े हैं। वो अपने वालिद की तरफ से पाकिस्तानी और वालदा की तरफ से इराकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के एक और अहम और दिलचस्प मैच में अर्जेंटीना ने अपने सुपरस्टार खिलाड़ी मेसी की हैट्रिक के बदौलत अल्जीरिया की टीम को 3-0 से हरा दिया। यहीं पर इस वक्त की खबरें खत्म करते हैं। मैं हूं रिहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए SBS.com.au/urdu पर जाइए।

अभी आप ताज़ा तरीन खबरें सुन रहे थे। ये मुख्तसर खबरों का बुलेटिन हम रोज़ाना आपके लिए वर्किंग डेज में लेकर आते हैं। दोपहर 3 बजे हमारे फेसबुक पेज पर भी ये पब्लिश होता है। और जो खबरें आपने सुनी उनमें एक डेवलपिंग स्टोरी थी वन नेशन की सरबराह पॉलिन हैंसन की प्रेस क्लब में तकरीर के बारे में, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें एक ये इजाफी नोट आपके लिए और मालूम के तौर पर शामिल कर रहे हैं कि वन नेशन की सरबराह पॉलिन हैंसन ने आज प्रेस क्लब में खिताब के दौरान जहाँ कई मौजूद पर इजहार ख्याल किया, वहां उन्होंने बरसर इकदार आने की सूरत में SBS को खत्म करने की पॉलिसी का भी ऐलान किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप की भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि अभी आपने अर्जेंटीना के मैच के बारे में सुना और मैसी ने 3 गोल यानी हैट्रिक की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इस वक्त उर्दन और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच जारी है, और अगर मैच के खात्मे तक और हमें सूरत हाल मौसूल हो गई तो हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आप सुन सकेंगे कि चंदा देने या चैरिटी के कामों के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल जवाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी शहर चकवाल में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की तरफ भी ले चलेंगे और उस हादसे में जहां वाहक होने वाली 9 साल बच्ची के वालिद से आपको उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे। पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका ईरान माहदे का जिक्र रहेगा। ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तान के क्या हालात हैं उसकी बात होगी और इमरान खान को जेल से अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया, ये तमाम बातें पाकिस्तान रिपोर्ट में सुन सकिएगा। इसके अलावा भी कई मौजूद का अहाता करते रहेंगे। गीत, गज़लें और नगमे भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद। लेकिन वक्फा लेने से पहले क्यों ना आपको एक गीत की तरफ लिए चले। जी हाँ, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं जो जिमी खान और रहमा अली की आवाज़ में है और इसका टाइटल है नदिया। और ये गीत 2017 में कोक स्टूडियो में बड़ा सुपरहिट हुआ था। लीजिए, आप भी सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कोक स्टूडियो सीजन 7 के में नशर होने वाला एक बहुत मारूफ गीत जिसे जिमी खान और रहमा अली ने गाया था। ये 2014 में कोक

0: स्टूडियो के सीजन 7 में बहुत मकबूल हुआ था। अब एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुनिएगा, और आज का मौजू है फंड रेजिंग या चैरिटी के बारे में, जो चंदा जमा किया जाता है उसके ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल जवाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान रिपोर्ट भी सुनवाएंगे, और साथ साथ आपको चकवा पर्थ में रहने वाली एक उस खानदान के वो सरबराह यानी वालिद अदील अहमद के इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, जो इनकी बेटी चकवाल में एक पुलिस शूटिंग के दरमियान जां बहक हो गई।
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas. Y así, de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you.
3: I had a not so motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never landed about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain. Nation home you. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
6: Earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, chef!
8: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
8: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: SBS Audio.
11: Play button दबाइए.
12: Pop Asia, non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
15: Far from the partisan politics.
16: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा podcast. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुँचने के लिए SBS Audio app download कीजिए.
10: sbs.com.au/audio.
0: आप हैं SBS उर्दू की नशरियात के साथ, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे बहुत से ऐसे सेगमेंट होते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि रोज़ाना हम आपके लिए कुछ फीचर्स और इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और दिलचस्प खबरें लेकर आते हैं, मगर प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है। तो इसलिए अगर आप हमारा प्रोग्राम के कोई सी पॉडकास्ट को मिस नहीं करना चाहते तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। उनमें बेहतरीन तरीका यह है कि आप sbs.com.au/urdu पर जाइए, जहां हमारे तमाम पब्लिशशुदा पॉडकास्ट आपको मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा हम फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं ये तमाम पॉडकास्ट और आर्टिकल और वीडियोस। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, और यूट्यूब भी हम मौजूद है साउथ एशियन चैनल पर SBS उर्दू का, तो वो भी आप देख सकते हैं। मगर एक और तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन का, यानी हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मुफ्त मौजूद है एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए। आप उस पर

0: बंदे को जो शुड हैव बीन 2+। तो अभी तक ये स्टोरी है, लेकिन हम इनके ना यहाँ के इलाज से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, कहते कुछ हैं, आके मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ और करते हैं। रही बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो मैंने रब्ता किया था कंसुलेट को, वो आए थे, हमें मिलने आए थे, किम भी आई थी, वली भाई भी आए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि वो कल दोबारा आएंगे मिलने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिकमेंड करके गए हैं कि ये हमारी लोएस्ट की लिस्ट है, इसके अलावा हमें कोई अभी तक हेल्प नहीं मिली है। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें कोई गो फंड पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें खैरात की ज़रूरत है। ऑल वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे साथ जो हुआ वो ये इसको पोर्ट टू बेड किया जाए। जिस बंदे ने हमें मारा है, सी सी टी वाले ने, पुलिस वाले ने, पुलिस वालों ने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये वाकया रिपीट ना हो, और सी सी टी वालों के इख्तियारात को कम किया जाए। दिस मैटर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मैं उनको ईमेल भी करूँगा एथनी एल्बनीज को, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हायर चैनल्स पे जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं उनको फ़ोन कॉल करें, उनसे मिलें, उनसे ईमेल करें, व्हाट एवर ही नीड्स टू डू, इट नीड्स टू बी डन प्रॉपरली, ताकि इस चीज़ को सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये इंतहाई इनकम्पिटेंट लोग हैं सी सी डी वाले, इनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इनको कोई दिमाग नहीं है, इनको बस ड्राफ्टें दी हुई हैं, मशीन गनें दी हुई हैं, ये बस जो है ना बस गोलियां चलाने के बाहर है, और इनके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा था वो मैं देख लिया था, उन्होंने सी सी टी वालों, सी सी टी दफ्तर के बिल्कुल पास ये बात हुई है, उनके भी कैमराज होंगे, उन्होंने मैं तब कोई फुटेज अभी तक उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की है। ऑब्वियसली जो फुटेज मिली है अभी सो फार वो हमें एक गली जो थी लोकल होम था वहाँ से मिली है। सी सी डी के अपने ऑफिस के बाद डेफिनेटली फुटेज होगी, वो फुटेज पब्लिक को दस्तयाब होनी चाहिए कि उस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता मैं वेट करता, चोर हमें लूट के जो चीज़ लेनी थी वो चले जाते, उसके बाद उन पर फायरिंग करते। जो जनरल पब्लिक उस पर कैसे फायरिंग की गई है, एट दैट पॉइंट भी उनको ये नहीं पता था कि जनरल पब्लिक भी वहाँ पे है चोरों के साथ जो लूट रहे हैं उनको, और उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग हैं, इंतहाई अनप्रोफेशनल। जस्ट सो दैट इट इज़ क्लियर, जो फायरिंग शुरू की गई थी वो सी सी डी ने शुरू की थी, चोरों ने फायरिंग पहले शुरू नहीं की थी। ये दो से तीन बंदे थे जिन्होंने हमें गोलियां चलाई हैं, और पहली फायरिंग सी सी डी ने की थी, और उसके बाद सी सी डी ने हमें गोलियां मारी हैं। ये गोलियां जो चोरों ने हमें बिल्कुल भी नहीं मारी। इसके अलावा एक बात और भी है कि सी सी डी वाले जो एहलकार थे उन्होंने हमें चेज भी किया है, उन्होंने हम पे गोलियां मारी हैं, पीछे से भी हमारे गाड़ी पे करते रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी, हम जब मैं गाड़ी चला रहा था तो हम टर्न लेते रहे, तो उस वजह से हमने उनको डॉच कर दिया और उन्होंने हमें छोड़ दिया, अदरवाइज वो हम सबको कत्ल कर देते। उनकी ये इंटेंशन थी, जैसे उन्होंने गोलियां शुरू से मारी थी वो एंड पे भी ये करते रहे हैं, उन्होंने यही करना था। और एक बंदा हरगिज भी नहीं है, ये चार बंदे हैं, दो मोटरसाइकिल थे, और इसका मतलब चार बंदे हैं, और चार बंदों को एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए।
1: सामीन, अदील अहमद की गुफ्तगू आपने समाप्त की। अदील अहमद अब शफाफ तहकीकात और इंसाफ के मुंतजिर है।
2: यहाँ यह एक याद दहानी कि ये इंटरव्यू इतवार 14 जून को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वाकया ये 10 जून को हुआ है चकवाल में, और इसके बाद काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि हमारे कायम करदा जवाबित से इनहराफ का कोई जवाब नहीं था, और केस की हसासियत के पेश नज़र तफ्तीश अब मुकामी पुलिस से लेकर सी सी डी के हवाले कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक मुकदमे का इंदराज दफा 303 के तहत किया गया, ताहम अब इसमें दफा 322 भी शामिल कर दी गई है। अदालत ने मुलजिम को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। मुलजिम से सरकारी असलाह रिकवर कर लिया गया है, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए 16 जून को चकवाल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। तो ये तो अब तक की डेवलपमेंट है, और ये एक अफसोसनाक वाकया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, और इस सिलसिले में हमारी अपडेट्स और हमारी बहुत सी पोस्ट और वीडियोस आप sbs.com.au/urdu पर पाएंगे। इसके अलावा facebook.com/sbsurdu और instagram.com/sbsurdu पर भी एक रील भी मौजूद है और इंटरव्यू भी मौजूद है, और इसका बारे में बहुत सी तफसीलात हमारे फेसबुक पेज पर पहले ही आपके लिए काफ़ी मालूमात फराहम कर रही हैं। इस सिलसिले में अगर आप में से कुछ लोग इससे किसी किस्म की मदद हासिल करना चाहें तो रेस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया पर जाकर मदद हासिल कर सकते हैं। और SBS की बाकी नशरियात के बारे में भी आपको आगाही दे दें कि हम

0: अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में नासिर काजमी की गज़ल सुन रहे थे। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। SBS उर्दू की नशरियात में जब हम वापस आएंगे तो आपको हम पाकिस्तान लिए चलेंगे और वहाँ करंट अफेयर यानी हालात हाजरा की सूरत हाल के बारे में आगाही देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न पर जारी एक बड़ी मकबूल टेलीविज़न सीरियल का एक OST भी आपको सुनवाएंगे जो इस सीरियल के साथ साथ खुद भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Freeforever.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered.
3: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos un... Nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
4: SBS Audio App, आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या एप स्टोर से SBS Audio App मुफ्त हासिल करें।
0: SBS उर्दू की नशरियात में रिहान अलवी आपके साथ मौजूद है। इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं हालात हजरा की तरफ। पाकिस्तान से सुनते हैं ये रिपोर्ट जिसमें जिक्र है अमरीका ईरान के अमन माहदे की, इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली की और इसके अलावा पीपल पार्टी के बजट पर तहफ़ुज़ात और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कशीदा हालात का। ये सब सुनिए पाकिस्तान रिपोर्ट में।
5: SBS उर्दू के लिए इस हफ्ते की रिपोर्ट के साथ मैं हूं असगर हयात। सामीन, अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी से जंग बंदी और अमन माहदा तय पा गया है। अमन माहदे पर दस्तखत जुमे के रोज जेनवा में होंगे। फ्रांस में जारी G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे की तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान जोरी हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं होगा, आपना हुरमुज जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखतों की तकरीब का मेजबान होगा।
6: जो इज्जत अल्लाह ताला ने आज अता फरमाई है नाज़िम स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिली। अमन के क्याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए।
5: पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान अमन माहदे को बड़ी सफाती कामयाबी करा दिया है।
7: 78 साल में इससे ज्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो

फीफा वर्ल्ड कप का पहला वड्डा उलटफेर सामने आ चुका है। टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार स्पेन नू डेब्यू कर रही काबू वाडे टीम ने जित तो वांझा रखा है। हैरानीजनक तौर पर टूर्नामेंट के पंजे दिन खेडे गए चारे मैच ड्रॉ रहे, जो कि पिछले 68 सालों में विश्व कप में पहली बार होया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पंजे दिन दी अपडेट्स में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ पुनीत टिंगरा अते है पंजे दिन का पूरा राउंड अप। अफ्रीका की पहली बार खेड रही टीम काबो वाडे ने विश्व कप इतिहास में सब तो वड्डे उलटफेरा विचों एक कर विखाया, जदों उन्होंने अटलांटा विच टूर्नामेंट की सब तो मजबूत टीम स्पेन नू बिना किसी गोल दे ड्रा ते रोक दिता। टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले सब तो छोटे देशों विचों एक काबो वाडे लई 40 साल गोलकीपर वॉजहिना ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 अहम बचा करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। दूजे पासे सिएटल विच बेल्जियम अते मिसर यानी इजिप्ट विचकार मैच एक एक दी बराबरी ते मुकिया। मिसर दे इमाम आशूर ने 19वें मिनट विच एक शानदार लंबी दूरी दी हिट नाल अपने वर्ल्ड कप दे सफर दी यादगार शुरुआत कीती। बेल्जियम दे तजर्बेकार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने 66वें मिनट विच मैदान ते आउंदिया ही अपना असर दिखाया। मैच विच दाखिल होण ते सिर्फ 23 सकिंटा बाद ही मिसर तो अपने खिलाफ ही गोल करवाउण विच उन्हां ने मदद कीती। ग्रुप एच विच मियामी विच साउदी अरब अते उरुग्वे दा मैच वी एक एक नाल ड्रॉ रहा। दोवें गोल विरोधी गोलकीपरां वल्लों कीते गए बचाव तों बाद मिले रीबाउंड्स ते कीते गए, जिन्हां विच्चों इक इक गोल दोवें हाफ दे विच आया। स्पेन अते काबो वाडे दे पहला ड्रॉ खेडण तों बाद हुण ग्रुप एच विच मुकाबला पूरी तरह खुल चुका है। अपने पहले मैचों तों बाद चारे टीमां इक इक अंक दे नाल बराबरी ते ने। लॉस एंजल्स विच न्यूजीलैंड एलिजा दे गोलां दी बदौलत दो वार अगे रहा, पर ईरान ने दोवें वार वापसी कीती। मुहम्मद महबी दे 64वें मिंट विच कीते बराबरी दे गोल ने मैच नूं 2-2 नाल ड्रॉ करवा दिता। इस नतीजे नाल डे 5 दे सारे चारे मैच ड्रॉ रहे, जो कि विश्व कप दे 68 सालां दे इतिहास विच पहली बार वापरिया है। तुर्की खिलाफ जित तो बाद सोक्रूज हुण मेजबान संयुक्त राज अमरीका खिलाफ वड्डी चुनौती लई तैयारी कर रहे ने। मिडफील्डर कॉनर मेटकाफ दा कहना है कि टीम अपनी जित दी लहर नूं जारी रखण लई पूरी तरह

0: el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: SBS Audio.
3: अपनी वेवलेंथ नाल मेल खांदियां तिरंगा सुनन ले प्ले बटन दबो.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: फिलहाल ही सख्त तो वध भाषावां विच खबरां भी. तुहाडे मूड नाल मेल खांदा संगीत अते मनमोहक पॉडकास्ट भी जो तुहाडी उडीक कर रहे ने. SBS Audio ऐप डाउनलोड करो जां
2: sbs.com.au/audio.
9: ब्रेक तो बाद स्वागत है जी. तुसी सुन रहे हो SBS पंजाबी दा बुधवार वाला प्रोग्राम आज सिडनी तो जसनीत कौर दे नाल. आज दे प्रोग्राम विच आपां फीफा वर्ल्ड कप अते फिर भारतीय पिछोकर दे आस्ट्रेलियन क्रिकेटर निखिल चौधरी दी सिलेक्शन बारे जानिया ते आओ हुण अगे वधाउने आ अज दे प्रोग्राम नूं. दोस्तों तुसी दसो तुहानूं की लगदा कि डिग्री लैके काम करन वाले लोग ज़्यादा पैसे कमाउंदे हन या फिर बिना डिग्री वाले. अक्सर यह मनिया जाता सी कि आस्ट्रेलिया विच वधिया कमाई अते सफल करियर दा रास्ता यूनिवर्सिटी दी डिग्री राही ही जाता है, पर हुण यह गल थोड़ी बदल रही है. ओह किवें, आओ जानदे हां SBS पंजाबी तो पत्रस मसीह द्वारा पेश कीती इस रिपोर्ट विच.
10: प्यारे दोस्तों तुसी जुड़े हो SBS पंजाबी दे नाल ते मेलबर्न स्टूडियो तो मैं हां पत्रस मसीह. अज असी गल करांगे आस्ट्रेलिया दे बदलदे रोजगार बाजार दी. एक अजिहा बदला जो सिर्फ नौकरियां ही नहीं सगों सिक्ख्या कमाई अते भविख दे करियर बारे साडी सोच नूं भी बदल लिया है. इसे बारे होर चानना पाउंदी पेश है एक खास रिपोर्ट. आस्ट्रेलिया दे विच घरां दी कमी है. सरकार वड्डे पद्धर ते नवें घर बनाउण दी योजना बना रही है. इस दे नाल ही नवियाउण योग ऊर्जा अते बुनियादी ढांचे दे वड्डे प्रोजैक्ट भी चल रहे ने. इन्हां सारे प्रोजैक्टां नूं पूरा करन दे लई इलैक्ट्रीशियन, पलंबर, कारपेंटर, ब्रिकलेयर अते होर बहुत सारे हुनरमंद कारीगरां दी जरूरत है. इसे कारण ट्रेडां दी मंग अते तनखा दोवें वध रहे हन अते इस दा असर सिक्ख्या प्रणाली विच वी दिखाई दे रहा है. सरकारी अंकड़ियां मुताबक पिछले 10 महीनियां दे विच 25,000 तों वध लोकां ने अप्रेंटिसशिपां कीतियां ने अते सब तों वध दाखले कारपेंटरी, पलंबिंग अते इलैक्ट्रीकल ट्रेडां दे विच होए हन. अप्रेंटिस करन वालियां नूं सरकार दे वलों वित्तीय सहायता भी दित्ती जा रही है तां जो होर नौजवान ट्रेडां दे वल आकर्षित हो सकन. पर इन्ने यतनां दे बावजूद हुनरमंद कर्मचारियां दी घाट अजे भी एक वड्डी चुनौती है. जॉब्स एंड स्किल्स आस्ट्रेलिया दे अंकड़े दसदे ने कि निर्माण खेतर नाल जुड़े लगभग अद्धे कित्तियां दे विच कर्मचारियां दी कमी है. जिस हुनर दी मंग वध अते सप्लाई घट होवे उस दी कीमत वधना कुदरती गल है अते इस दा सिद्धा असर तनखाह ते पै रहा है. यही कारण है कि अज कई ट्रेड कर्मचारी अजिही आमदन कमा रहे ने जो पहला सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री वाले पेशियां नाल जोड़ी जांदी सी. कुछ इसे तरह की हामी भर रहे ने पंजाब दे जिला बठिंडा नाल संबंध रखदे अते 2017 विच स्किल्ड वर्क वीजे ते आस्ट्रेलिया आए अमनदीप सिंह. ओ एक तजर्बेकार इलैक्ट्रीशियन सन अते उन्हां नूं पूरा विश्वास सी कि इत्थे हुनरमंद ट्रेडां विच भविख है. अज करीब 10 सालां दे बाद ओ ना सिर्फ एक सफल इलैक्ट्रीशियन हन सगों एक सोलर कारोबार भी चला रहे ने. उन्हां दा कहना है कि तजर्बेकार इलैक्ट्रीशियन आस्ट्रेलिया दे विच सालाना $2,00,000 तक कमा सकदे ने अते इत्थे काम दी कोई कमी नहीं है. असल विच अमनदीप दी इह कहानी एक वड्डी आर्थिक हकीकत नूं बयान करदी है. इस दे नाल एक होर दिलचस्प सवाल खड़ा हुंदा है कि की यूनिवर्सिटी दी डिग्री अजे भी सब तों वधिया रस्ता है. इस दा उत्तर हाँ भी है अते नहीं भी. मेडिसन, कानून अते वड्डियां कारपोरेट नौकरियां विच यूनिवर्सिटी डिग्री दी महत्ता अजे भी कायम है. पर दूजे पासे कई ट्रेड अते तकनीकी योग्यतावां भी हुण 6 अंकां वाली आमदन दे रहियां ने. इसे कारण हुण ट्रेडां नूं दूजा विकल्प नहीं सगों एक मजबूत अते आकर्षक करियर मन्निया जा रहा है. ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਕਿ AI। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ AI ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ AI ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ।

0: not care too much what others have to think or what they have to say and just be the best
1: जी
0: we
1: बिल्कुल
0: can be, so
1: जी बिल्कुल एंड वो बिलीफ तुहाडे विच दिस रही है जी कि तुहाडे इन्ने सेटबैक्स तो बाद भी तुसी अग्गे दी अग्गे वधदे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल ते खेडदे जा रहे हैं ते वो तुसी जड़ी गल कही सीगी कि जे कोई रिप्रेजेंटेशन घट आ तो फिर तुसी बनोगे वो रिप्रेजेंटेशन ते तुसी बिल्कुल बन रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप दे विच असी एक जर्सी उत्ते नाम पहली बारी देखांगे ते वो नाम सिंह आ ते ये चीज़ देख के बहुत सारे पंजाबी बहुत सारे साउथ एशियंस नूं लग रहा है कि उन्हां दी एक परसनल विन है तुहाडे लई खुश तो है ही है बट एक फैमिलियर नाम देख के आप भी बहुत खुशी महसूस करते हैं तुहानू किस तरह का महसूस हो रहा है कि सिंह नाम वाली जर्जी फीफा वर्ल्ड कप विच सब तो पहली बारी तुसी पा रहे हो ते लोकां दी खुशी देख के तुहानू किदां दा महसूस हो रहा है जी
0: हाँ जी मैनू बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है जदों मैं वीडियो देखदा जा मैसेज आउंदे मैनू मैनू बहुत ज्यादा या जस्ट अ वेरी प्राउड फीलिंग ता यू नो मैं कोशिश करदा पे मैं पंजाबीया दा नाम मोर नू करां ता ज्यादा वधिया खेलां ता जिहड़े जिदा न्याणे भी खेलना चाहुंदे आ दैट दे हैव समबडी टू लुक अप टू दे हैव अ रेफरेंस पॉइंट so yeah, मैं पूरी कोशिश करदा मेहनत मैं रोज करदा so that I can perform well.
1: ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਫਾ ਮੈਚਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੈਚਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ
0: हाँ जी बस नहीं कुछ ज्यादा तो नहीं सोचता जस्ट आई थिंक सब तो इम्पोर्टेंट चीज है जेरी प्रेपरेशन होंगी है जेरे गेम तो पहला एन अपनी रूटीन करनी है खाना किदा दा खाना तो स्ट्रेचिंग जिम वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है तो फिर जो गेम से पहुंचना है दैट्स जस्ट द गेम दैट्स द फन पार्ट यू नो उत्ते एंजॉय करना चाहिए फिर एडी स्टेज ते आप खेल सकते हैं ता ऑब्वियसली मैं कोशिश करनी है सब बढ़िया खेलने लाई ता टीम लाई भी वे आप जितांगे या ऑल ऑफ इट्स जस्ट डाउन टू प्रिपरेशन सो आई एम प्रीटी रिलैक्स्ड एंड यू नो आई डू माय थिंग आई लिसन टू म्यूजिक अ लॉट ऑफ पंजाबी म्यूजिक बिफोर द गेम सो दैट्स व्हाट गेट्स मी इन द जोन टू बी ऑनेस्ट
1: Gets you pumped.
0: या एग्जैक्टली या
1: And what are some of the upcoming matches that New Zealand will be playing in?
0: On Monday the 15th, we play against Iran, and then the 21st against Egypt, and then the 26th against Belgium. So tough games, but exciting games.
1: All the best, wishing you all the best with all the games and the rest of your team as well. Tej, is ton alawa gal kariye after the FIFA World Cup. I know that's the main focus for you at the moment. What are some other things that are on your bucket list or on your vision board that you want to do after the FIFA World Cup? The big dreams on the card for you.
0: Yeah, I think I haven't thought too much about that, but I think the amount of like happiness I'm getting from being in this moment, I think if I can help to drive that even further, you know, I don't just want it to be a World Cup and done, you know. I want it to keep going, to keep lifting the name of Singh, you know. I think it's very powerful and that's what I want to try and achieve. So just to build on this, I feel like this is a starting point for me and just to continue to build and build and like I said before, just inspire the next generation because there'll be nothing better than seeing 1,000 of us here, you know, one day playing. So that's what I want to try and do to help create a pathway for everyone else coming through.
1: जी बिल्कुल एंड यू ऑलरेडी पुट अ स्टार्ट टू इट एंड आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी यंग फुटबॉलर्स वाचिंग यू इन द फीफा वर्ल्ड कप एंड इट विल जस्ट सीम दैट मच अ लिटिल बिट मोर इजीयर फॉर देम टू गेट देयर मोटिवेशनल फॉर देम टू गेट देयर इट्स बीन ऑसम चैटिंग विद यू टुडे बहुत वधिया लग रहा है जी तुहाडे नाल गलबात करके द फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू टुडे इज एनी मैसेज फॉर द यंग फुटबॉलर्स आउट देयर दैट विल सी यू ऑन देयर टीवी स्क्रीन्स
0: Dream big. I think anything's possible in this world. So dream big and work hard and your dreams will come true.
1: Bahut bahut shukriya, Sarpreet ji. It was really, really lovely speaking with you today and all the best for the FIFA World Cup.
0: Perfect. Thank you very much for having me.
2: Online at social media te hosh samagri labo. sbs.com.au/Punjabi te jao ja Facebook te SBS Punjabi nu follow karo.
1: ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਈਜਿਪਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ

0: प्यारे श्रोतियों वेला हो गया जी प्रोग्राम दे अगले हिस्से तो पहला एक छोटा जा वक्फा लैण दा इस तो बाद हर बुधवार दी तरह जाणांगे बॉलीवुड दीआं खास खबरां मैं देख रही हां जी स्क्रीन ते कुछ स्नेहे आए होए आ इह पढ़ के सुणाऊंगी जी ब्रेक तो बाद सो जेकर तुसीं हजे भेज रहे हो फटाफट भेज दिओ जी ब्रेक तो बाद फिर सुणाउनी आ मिलदे हां जी इस छोटी जी ब्रेक तो बाद
1: Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: स्वागत है जी मैं हाँ जसनीत कौर ते तुसी सुन रहे हो SBS पंजाबी ते आज दे प्रोग्राम दे विच कुछ स्नेहे आए होया जी ते अग्गे वधण तो पहला पढ़ के सुनाना चाहांगी सब तो पहला स्नेहा भेजे है जी हरमनप्रीत सिंह जी ने सिडनी तो ते ओ कह रहे है कि मैं कल भी सारा प्रोग्राम सुनिया सी MP सिंह जी दा ते मैं सॉकर दा फैन आ जी ट्राई करदा हुन्ना जदों भी टाइम मिले ते मैं हाईलाइट्स देख लैंदा आ ते सरप्रीत सिंह जी नाल जो गलबात होई उन्हां नूं काफी वधिया लगी बहुत बहुत शुक्रिया हरमनप्रीत सिंह जी कि तुसी सानू लाइव सुन रहे आ ते जी हां मैनूं लगदा सारे ही असी जिन्हां नूं टाइम नहीं

0: बॉलीवुड गपशप विच अज इन्ना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे और बॉलीवुड दी ताजा खबरां लेके। तद तक लई इजाजत।
1: प्यारे दोस्तों, अज दे प्रोग्राम नूं समेटण दा समां नेड़े आ रहा जी, पर इस तों पहलां इक सुनेहा आया होया जी, ओह पढ़ के सुनाउणा चाहांगी। सुनेहा भेजिआ जी सिडनी तों इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते उहनां दे परिवार ने। ओह कह रहे कि इस प्रोग्राम दा समां पंजाबीआं दी लोहड़े वेले दी चाह नाल बहुत मेल खांदा है। असीं हर वार इस प्रोग्राम दा आनंद चाह दीआं चुस्कीआं नाल ही लैंदे हां। SBS दी सारी टीम दा धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते